0: सिङ्गापुर होलसेल।
1: नेपालगञ्ज सेतु विकट चोक,
2: सिङ्गापुर होलसेल।
1: नेपालगञ्ज सेतु विकट चोक, नामै काफी क्या दामी।
2: लेडिज तथा जेन्ट्स सबै उमेर समूह र सबै प्रकारका डिजाइनका फेन्सी कपडा पाइन्छ। आजै रोजौ है।
1: मन पर्यो त पर्यो पर्यो।
0: नेपालगञ्जमा एकमात्र ठाउँ, होलसेल मूल्यमा खुद्रा फेन्सी कपडा किन्न, रोज्न, छुन, लगाउन पाइने स्थान सिङ्गापुर होलसेल।
1: सिङ्गापुर होलसेल सेतु बेका चोक, अहिलेै जान पर्यो। हो, सिङ्गापुर होलसेल मल, नेपालगञ्ज सेतु बिका चोक। फोन 97-0-695-92-45, 98-28-36-50-65। सिङ्गापुर होलसेल मल।
3: कफी रेडी।
4: वाओ, थैंक यू। यो साँझलाई अच्छे सुगन्धित बनाउँछु मंगलदीप सेन्ट 3-in-1 को साथ।
3: I love it too.
4: Hamila mon parcha bhane bhagwan lai pani mon parcha.
3: Mangaldeep scent 3-in-1 perfume like fragrance.
5: Yo Krishna Sar FM
6: 94 megahertz Krishna Sar jatti ke tez.

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

பர்தைனே சசரிவே பர்தைனே பர்தைனே. எஸ் அம்மா, டாய்லெட் காரம் வச்சுக்குவே. चार हजार बुढ़ा ने टन्ने हाल खाम यो पाली बुढ़ा को बेपार राम से क्या हो।

0: सेवामा सम्मान, पेशामा गर्व। ढुक ढुक होइन ढुक कहौ, प्रभु मा लक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सकै अभिकर्ता बनौ।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
3: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक, टाइम टेक, अहिले ठीक

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-389।
3: ओहो, आज दाई नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेना कहटु।
4: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालकै अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफारकैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
3: ए बात त ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त?
4: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
3: ए ओसिनो कलसे उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
4: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो, कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
5: स्वयंसेविका दिज्यू नमस्कार, हजुरलाई कति फोन गरे, मेसेज पनि पठाए, सम्पर्क नै हुन सकेन भन्या।
6: ए मुना बहिनी हो, किन अत्तालिनु भएको? ल अब सम्पर्क भइहाल्यो नि, के भयो भन त छिटो।
5: स्वयंसेविका दिदी हेर्नु न, मेरो 4 वर्षकी छोरीलाई 4-5 दिनदेखि ज्वरो आएको थियो, अनि अहिले फेरि शरीरभरि बिमिरा पनि आएको छ, लौ न के गर्ने होला दिदी।
6: ए ढिलो नगरिकन छोरीलाई स्वास्थ्य संस्था लिएर गइहाल मुना बहिनी, दादुरा आएको पनि हुनसक्छ, र अरू बच्चालाई पनि यस्तै छ भने तुरन्त स्वास्थ्य संस्था लिएर जान भन्नु है।
7: कुनै पनि बालबालिका वा व्यक्तिको शरीरको कुनै पनि भागमा बिमिरा सहित ज्वरो आएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था गएर स्वास्थ्य कर्मीलाई भेटेर वा पैसा नलाग्ने हेलो स्वास्थ्य 1115 फोन गरी तुरुन्तै जानकारी गराउनु। पीएचआरडी नेपाल, युनिसेफ नेपाल, द पेन्डेमिक फन्ड, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा।

0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 और 98482804665।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: बर्जर पेन्स
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 98580304 र 98481380
4: ओहो आज दाई हाँ नहीं मजा लागा थो मजा से दवाई करे ना कह तो
5: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
4: ए बात तो ठीक है कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
5: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर

0: विधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
0: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ ले जिदा हो?
0: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र जाई ना, वहाँ अनुभवी चिकित्सा को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हर एक दिन कान के परीक्षण हुई। वोत्रकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने धूसी, कान खजुईना, कान कम सुनना, कान दम्मा हुईना बिरामी के उपचार ओ परामर्श। वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई। वकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी सेवा वहाँ मिला।
1: ए ओसी ढो कल से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेल से वजह से सुनो से कही ता।
0: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। सम्पर्क नम्बर 98-84-20-697, 98-85-23-697 ओ 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
0: जस्तक सर्जरी के सकु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सकु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सब कुछ सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
0: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज। सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 ओ 98-482-80-465।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है, जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है, जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घुमा थो।
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाली ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कार्यक्रम लेकर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी और हमारे प्रार्थी माँ जो सदा साथी रहे चंदा जी दोनों जने आए गवागा है, तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। सुना है कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0090-7081-415-122 के लाइन में आवाजी। कार्यक्रम आप के प्रिय रेडियो किसी सार FM 94 MHz से जो बिलासपुर 12 नेपालगंज बाके से प्रसार होते है किसी सार FM से, तो ये कार्यक्रम का सुना भी जाते है देखा भी जाते है। तो साथी आप लोग एकदम लाइक शेयर कमेंट करते रहा जी कार्यक्रम के, यहाँ कैसे माँ आप लोग ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाता है। तो आप लोगन के ये कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक पूरा भरपूर मनोरंजन कराओ जी, पुरस्कार भी दिया जाए, प्राइज भी कराओ जी, आपके माँ हर एक चीज़ आपके लिए सुविधा है। तो आप लोग नंबर में भी आओ जी, और अगर आप लोगन का अवधि हिंदी भक्ति भजन नात कवाली जो भी सामाजिक गाना जो समाज में हमारे तमाम परिवार है घर में, जैसे आपके घर में तमाम बहुत सैगर परिवार हैं, बिटिया जवान बहन जवान बहू जवान महतारी बाप भाई लड़के सब जवान हैं, तो वो गाना ऐसा चॉइस करके मैसेज में पठवा जाए, लिख के पठवा जाए, चिट्ठी वगैरह में भी पठवा जाए, फ़ोन में भी संपर्क करके बतावा जाए कि वो गाना हम लोग जो समाज में पठाई सका जाए, सारा परिवार बैठ के कार्यक्रम का और गाना का प्यार प्रेम के साथ माँ बहू बिटिया भाई बंदा सब बूढ़े जवान सब सुने कि कार्यक्रम में कोई दगल फसल वाला गीत ना पठवा जाए, कोई नकारात्मक गाना ना पठवा जाए, जो हम शब्द का आपके नाम ना ले पाई जबान पर, सामाजिक गाना जो समाज के लिए हो, आपके फरमाइश के गाना जब समाज में बजी तो पूरा विश्व सुनी, तो ऐसा गीत अवधि हो हिंदी हो भक्ति हो भजन हो नात हो कव्वाली हो, तो ऐसे हमरे एक मिला बहुत दूर से जो मैसेज भेज देने हैं कि जेह दिन देहिया से सुगना फरार हो जाई, हाँ कही के निर्गुण भजन पठाई नहीं, देखो कितना अच्छा हमरे ये मैसेज पठाई ना है, हाँ बहुत दूर से अब उनके मैसेज पढ़े थे। तो ये कार्यक्रम में यहाँ आपका पुरस्कार मिली, आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए कार्यक्रम में। यहाँ ये कार्यक्रम के परियोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो साथ ही पहला नंबर में गाना है आज के सिंगर और फिल्म और सब पूरा नाम सही बतावा जाए, हाँ तो पहला नंबर में गाना है मेरी बात को यू हंसी में ना टालो, जो अपना बने उसे अपना बना लो। खैर कौन फिल्म के गाना हो कौन सिंगर का गाना का गाई सही से दूसरे नंबर में है। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, हाँ तो कौन फिल्म हुए कौन गायक लोग गए ने साथी दोनों कहीं एकदम सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे के आप लोग पुरस्कार जीता जाई। ये कार्यक्रम में हमका पूरा 2 घंटा साथ दे हमरे प्रार्थी में यहाँ चंदा जी, उनका हम यही कहते कि हमरे समाज के जितने श्रोता माँ बहने भाई बंधु अपन बिरान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मन छुए वाला एकदम आप लोगन का गीत संगीत से भी मनोरंजन कर रहे हैं। तो साथ ही आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए तो बोले सुना जाए प्यारा से निर्गुण गाना, आप लोग ये जो निर्गुण गीत है तो सुना जाए प्यारा से निर्गुण गीत। हाँ कोई साथी फोन में आएगा पहले उनका आप स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार मियाँ जी। नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, आपके नाम?
1: हमारा नाम मोतीलाल यादव, बाकी गांव से बोली
0: से। मोतीलाल हो?
1: हाँ।
0: और मोती
1: सब बढ़िया है?
0: बा बढ़िया हो चाहिए।
1: हाँ
0: ठीक है, तो क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए।
1: एक नंबर के है छोटी बहू फिल्म के नाम हो।
0: हाँ
1: और कुमार सानू की आवाज है, और दूसरा नंबर में धर्मवीर फिल्म हो और मोहम्मद रफी की आवाज है।
0: ठीक है, तो अब सिख बजे वाला
1: मियाँ जी।
0: हाँ
1: सुनो, सही सुना के गाना, सुना के गाना।
0: कौन गाना?
1: चरणों की सौगंध फिल्म हो।
0: चरणों की सौगंध।
1: और गाना के बोल है एक रावण, रावण को राम ने मारा, इस रावण को मैं मारूंगा।
0: अरे तो बहन रावण मारे बड़ी दूर है।
1: अरे तेरी बजाय है तुझे
0: जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरा लंका आज उजारूंगा।
1: हाँ,
0: एक रावण ने राम को मारा।
1: राम ने रावण को मारा।
0: हाँ, रावण राम ने रावण को मारा, आज रावण को मैं मारूंगा। ठीक है, हम आपका ये गाना सुना देवे ना, तो सुनाई हो किका किका।
1: सबसे पहले आपका, चंदा जी का, हमें भद्रा सिंह सिरपाली जी का, जितने अखिल सुने वाले सबका।
0: चंदा जी का ना सुनावा करो।
1: काहे?
0: मैंने सब दुनिया सुन ली हुई है कि उनका ना सुना है। नहीं
1: नहीं, सबका सुनाई दे, हम पूरा एफएम परिवार का।
0: ठीक है भैया। अरे तो चंदा जी देखो उजेर करत है, अंधेरे में जाते है तो गिरत पर अंदर है, तो कहते चंदा जी का जब
1: तो चली भैया
0: चंदा मामा दूर के का लिए कटोरा खीर के है। हाँ, तुझे धीरे बताए थे कि चंदा का न सुनाओ करो, न बतावा करो, मैंने वो सुन ली नहीं सब। लियो ठीक है, हंसी मसोहरा के तो साथ होते है न। मोतीलाल जी ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ साथी, हमरे मोतीलाल जी रहा है जो हमरे बाकी गांव से, तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन, उसके बाद में सुना जी निर्गुण भजन, उसके बाद में आप लोगन के यहाँ प्यारा प्यारा गीत संगीत से तो हम लोग मनोरंजन करेबे करबे। तो ले आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415 1122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 8415 1122 के लिए नाव जी, और जो मैसेज में पठोक चाह जाते तो 98155 96 3 6 में आप जो भी हिंदी अवधि भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली पटवा जी हमरे तिर बराबर आपके मैसेज आए जी, उका हम आप लोगन के रेडियो तक आपके आवाज़ छुटकरी माँ नाम पता ठिकाना गाना के बोल लिख दिया जाए। तो अब चलिए थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ।
2: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

शरीर में जब तक प्राण बा तब तक शरीर के मोल बा, आ जब प्राण निकल जाए तई शरीर के कोनो मोल नहीं थे।

0: हाँ तो श्रोता प्यारा से निर्गुण भजन सुनागा, जहिया पिंजरा से सुगना फरार हो जाई, खाई केहू पीछे नहीं जिंदगी बेकार हो जाए। तो सही बात है, जब पिंजरा से सुगना फरार हो जाए तो को पूछी जिंदगी तो बेकार होगा। तो वास्तव माँ आई हमरे मैसेज भेजे न है, जो हमरे बहुत दूर बिजनौर जिला बिजनौर से मुकेश कुमार बरनवाल जी ये लिखी ने, सबसे पहले मियाँ साहेब आपका, आपके पूरे रेडियो परिवार का, पूरे फैमिली का आपका बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय माता दी। तो आपका भी नमस्कार, सलाम, जय माता दी है मुकेश कुमार बरनवाल जी। ये कहना है निर्गुण भजन ये अगले कार्यक्रम में पठाए ना, मैंने समय ना रहे के नाता, अगर मुकेश जी अगर आप रेडियो से ज्वाइंट हुई हो तो आपके निर्गुण भजन हम सुनाए दिया है। तो साथी इसे नंबर में जुड़ा जाए, 081415 के लाइन में आ जाए, नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 009707081415 के लाइन में आवा जाए। आज के क्वेश्चन है, मेरी बात कोई हंसी में न टालो, जो अपना बने उसे अपना बना लो, कौन फिल्म है, कौन गायक लोग गाना का गायन है, ऐसे दो नंबर में गाना है, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हाँ तो साथी दोनों गायक दोनों सिंगर के फिल्म के नाम बतावा जाए, कौन फिल्म हो, तो नंबर में जुड़ा जाए, 081415 122 के लाइन में आवा जाए। कार्यक्रम जो आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से गूंज रहा है, चेतना के धुन झनझन। हाँ साथी वही किसी सारे फेम, तो इसे हमारे हाथ में मैसेज भी आएगा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखने, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, इनके ठिकाना है विजय कुमार वर्मा, शिवानी गिरिल उद्योग, बाबा कुट्टी जो इमला पुल से खजुरा जानकी गांव पालिका छोटका खजुरा बाबा कुट्टी से मैसेज भेजे ने, इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका विजय कुमार वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते है। ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी ने महेश कुमार थारू जो बैजनाथ गांव पालिका पेड़ारी से मैसेज भेजी ने, कलवा खैनू टाटुल टाटुल मिजनी गैल सराय, कलवा खैनू टाटुल टाटुल मिजनी गैल सराय, बेरी खैनू टाटुल टाटुल मियाँ जी से बात कब्बो ना बात कह के वराय थे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है महेश जी, कहने तुहार बोली में कत्ता मजाक लागत कि अब का करूँ मियाँ, भेंट करे नहीं मन होते मगर छुट्टी नहीं मिला, किसान मनाई हर जाओ हर जाओ खेत पास जाओ, धान सान काटे बीने सब टेम हो गए बा, पानी भिजाए के सब जमाए दीच, ये तो सबके पर गति है महेश जी, एक मिला पर नहीं है पूरे संसार पर है, आप हम सब कोई दुख के मारे हैं मगर मालिक के हाथ में जो भी है वही अच्छा का कुछ ना सोचा जाए। तो ये कहने हमका गाना सुना दिया जाए, ही रांझा फिल्म के गाना सुना दिया जाए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, ठीक है हम आपका ये गाना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए तुझे, या तो कहने कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, दुई गाना में एक गाना जरूर सुना दिया जाए, धन्यवाद है आपका। ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी ने रहीस खां जो ही घरबाई टोल नेपालगंज बाके से, इन्हों कहने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम, आपकी कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, धन्यवाद है आपका अच्छा के लिए, कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जाए। इसे दोसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं ये मैसेज भेजी ने संगम टेलर से कृष्णा परियार जी, इन्हों लिखने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम, कहने कोई अच्छा गीत सुना दिया जी। साथी हैं मोहम्मद अफरोज खान हैं, सुभाष हैं और पूरे टेलर परिवार के यहाँ सुना चाहे थे, दर्शक बिंद का जितने हैं सब लोगन का सुना चाहे थे, हम चली थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जाए, एक राम ने रावण को मारा आज रावण को मैं मारूँगा, तेरा लंका आज उजारूँगा, जय जय श्री राम पुकारूँगा। हाँ तो साथी रेडियो से जुड़े रहा जी, दूर ना जाओ जी।
1: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
2: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट एट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
1: उपलब्ध सेवाहरू
2: ईसीजी, इको, टिएमटी, 24 घन्टे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
1: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
2: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 98215-97532। ठेगाना गणेशमान चोक, भेरी अस्पताल जाने बाटो, नेपालगञ्ज।

0: रङ्गाउ दैदेस मेरो एभरेस्ट
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउनै गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ, तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाँचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
3: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
7: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
8: छी डाडु, हो फे ठाहानी हो कि का उहो त हो जे बीएस सिलाई मेसिन सप्लायर्स।
7: बीएस सिलाई मसिन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मसिन पैठे बाबु?
8: उहाँ त अनमोल, उषा ओ ताज ब्रान्ड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मेसिन बिक्री ओ मरमट कई जिठा। एकरक संग संग मेसिन सम्बन्धी सक्कु पाठ पुर्जा हो सामान फे पाजिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
9: एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्यौहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाँके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
10: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
11: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz, कृष्ण सार जस तेज।

0: हाँ साथी, जो प्यारा से सुना गया एक राम ने रावण को मारा, आज रावण को मैं मारूंगा। खैर गाना बहुत अच्छा रहा है जो आप लोग सुना गया, तो इसे आप लोग नंबर में आवाज आए सुना 81415 1 के लाइन में आवाज है नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 1 के लाइन में आवाजे कोई साथी फोन लाइन में है उनका पहले स्वागत कैले देखी को कहाँ से नमस्कार। नमस्कार, वालेकुम सलाम।
1: हम मुन्ना सलमाने बोली से।
0: और मुन्ना
1: ठीक है?
0: बस ठीक हो चाहिए।
1: खिलौना के गाना सुना दो।
0: खिलौना के?
1: हाँ खिलौना पिक्चर के।
0: कौन गाना?
1: हाँ
0: कौन गाना?
1: अरे खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो।
0: अच्छा खिलौना जानकर मुझको मेरा दिल तोड़ जाती हो है? ठीक है, सलाम अलैकुम। हाँ साथी मुन्ना सलमानी रहा है तो इसे खिलौना फिल्म के गाना फरमाइश करी है, खिलौना जानकर मुझको मेरा दिल तोड़ जाती हो। खैर आप लोग नंबर में आ जाए सुना 81415 1 के लाइन में जुड़ा जाए। हाँ पहला नंबर में गाना है मेरी बात को यूँ हंसी में न टालो, जो अपना सीमे न टालो, जो अपना बने उस

0: सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेरे के कपड़ा हैसियत है, वहाँ से आपका टी शर्ट देवे तो साथी। ऐसे कोई साथी मेरे फ़ोन लाइन में आ रहे हैं, चले गए आवे जाए तो ऐसे हो ही जाते हैं। ऐसे दो सर मैसेज आएगा, मैसेज भेजने हमारे लाल सोनी जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। गाना सुनने वाले साथी हैं जैसे रघुनाथपुर के अशोक सोनी कुड़वा के ओमकार नाथ सोनी प्रेम लाल आरती पूजा ज्योति सीता गीता अंजनी और तमाम साथी लोगों का सुनावा अच्छा ही नहीं है। हाँ तो साथी अब हम चलित है पहले व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद माँ सुना जी प्यारा से गाना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंस।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
4: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
7: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
8: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
9: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
8: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
9: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
8: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
9: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
10: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
11: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं।

0: साथन कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगन के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगन के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

हाँ तो सुरताई प्यारा से गाना सुना गा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। खैर गाना बहुत अच्छा रहा है। तो साथी ऐसे आप लोगन के पठवा मैसेज हमारे हाथ में है, मैसेज भेजे वाले हैं जी मुबारक खां जो मैसेज भेजी ने सऊदी से ही लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। ये कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हम सऊदी महान मगर नेपाल के ठिकाना हमार बाकी जिला खजुरा गांव पालिका रजनवा माँ है। तो हम अपने घर परिवार का सबका सुनाओ चाहते, साथी संगी लोगन का। हमरे अब्बा है महमूद खान, लड़का है हसनैन खां, और लाल खां है, बैदू है, गोमती है, और तमाम साथी लोगन का। मियाँ जी आपका, आपके पूरे रेडियो परिवार का धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले हैं ये साथी, ये मैसेज पठवे वाले हैं, इनके ठिकाना है लालपुर बर्दिया जो वहाँ से मैसेज भेजी ने सुंदर रैदास जी, ये लिखी ने। सबसे पहले मियाँ चचा सलाम अलैकुम, तो वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मियाँ चचा आपके कार्यक्रम हम बराबर सुनी थे, सेठ खेते में धान वान काटा जाते, उचियावा जाते पानी चाहला माँ, मगर आपके कार्यक्रम बराबर सुना जाते। तो मियाँ चचा हमका गाना एक ठोर है, लगता है गहनवा पिया लायो मोर गवनवा, हो परदेसी छैला हमसे कटावे लागे धान, ये गाना सुना दिया जी। ठीक है मिल जाए गाना तो हम आपका जरूर सुनाइबे सुंदर जी। तो कहने अपने घर परिवार का, ब्रजेश रैदास का, और कहने किचिने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनावा चाहिए है। ऐसे दोसर मैसेज आवा है पवना पान भंडार से, मैसेज भेजी ने खजुरा बाजार से, इन्हों लिखी ने अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, तो वालेकुम अस्सलाम। कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, साथी हैं विनोद हैं विनय हैं राजा बाबू हैं काजल हैं, तमाम घर परिवार का सब लोगन का सुनाओ चाहिए। तो हम चली थे पहले 2 बजे के टेम चेक, टेम चेक के बाद माँ सुना जी प्यारा से गाना, गाना के बाद माँ हम आप फिर मिला जी, रेडियो के साथ माँ जुड़े रहा जी, रेडियो से दूर न जाओ जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेरे के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद नाए हमको हाए जग
3: सोचे भन्दा सस्तो मा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनु होस सोफा हब नेपालगंज।
4: हरेक सामान को खरीद मा 1000-20000 सम्म छुट, 10-15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरी को सुविधा पनि।
5: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
3: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
4: सम्पर्क 9705118470।
3: सोफा हब नेपालगंज,
4: विश्वास मा नम्बर 1,
3: क्वालिटी मा सबै भन्दा बेस्ट।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
6: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
6: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
6: संपर्क नंबर 9081536465, 9829888665 और 9842880465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो लिए बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से
4: दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, प्यारा से गाना सुना गा, खैर आप लोगन का अच्छा लाग हुई तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। सुने कैसी 415-122 के लाइन नेपाल के साथी आजी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में हमारे देश विदेश के साथी आजी। आप लोग जो सुना जाते हैं आप ही की प्रिय रेडियो किसी सारे पे 94 MHz जो चला थे कार्यक्रम चना जोर गरम, जो आप लोगन के 1 बजे से 3 बजे तक है कार्यक्रम, जिमा आपका क्वेश्चन के उत्तर दे परी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। पुरस्कार कहाँ से दिया जी, आप लोगन का बताए थे जो माना जाना हुआ ज्योति टेलर सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेरे के कपड़ा सिए थे, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, ऐसे आप लोगन के पठवा मैसेज हमारे हाथ में है, मैसेज भेजे नहीं मैसेज भेजे वाले साथी हैं रनियापुर जो चमकदार प्रवास से सज्जाद खां, ये लिखने की सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। ये कहीं ना हमका गाना सुना दिया जी, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा, घर छोड़ के जाओ ना ऐसा घर ना मिलेगा। ठीक है, मैं आपका गाना ज़रूर सुनेबे। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में कोई साथी हमें आए रहा मगर चले गया आवे जाए तो इसे हो जात है। ऐसे लाल मोहम्मद ठाकुर जो ये जनता हाई स्कूल से मैसेज भेजी ने, यही कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका लाल मोहम्मद ठाकुर के चिन्हे जाने ले सब साथी लोगन का सुना चाहते है। ऐसे खजुरा नहर से जो दल सिंगार यादव मैसेज भेजी ने, इन्हों कहने प्यारा से कोई गाना सुना दिया जी, उनका दल सिंगार यादव के सीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाया चाहिए था। अब हम चले थे व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद माँ आप लोग सुना जी प्यारा से गाना।
1: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेसरो तथा अंतिम भाग। शर्माजी को घर भूकंप ने हल्लाई रह झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँपछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
2: नमस्ते दाई।
3: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिन पछि देख्यौ त भाइ।
2: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए, अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
3: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त, अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
4: तपाईं पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
5: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
6: हाम्रा विशेषताहरू:
5: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
6: प्रत्येक दिन पेट छाती मुटु तथा सुगर थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा,
5: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
5: प्रत्येक महिना हार्दिक IVF काठमाडौँका निसन्तान बाझोपन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ECG, डिजिटल एक्सरे सेवा,
5: अत्याधुनिक AI प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
6: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% सम्म विशेष छुट सेवा।
5: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, NIC एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
6: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।

0: जनता के बो पांच दशक देखी
1: पिछले सारे फिल्म लगाई जो हमार पिया पिछले सारे फिल्म लगाई जो हमार पिया
2: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्ण सार जस तेज।

0: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
1: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
0: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
1: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
0: कस्तो खबर?
1: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
0: ए साँच्चै?
1: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: ए त्यो त झन् राम्रो
1: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
0: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
1: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
0: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
1: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
0: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
1: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535-717।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे बीटीई, सीआईसी, आरआईसी सेवा मिलत है।
6: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए। नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
7: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
6: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
7: संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 और 98482804665।
9: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
10: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
9: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
10: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
11: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
9: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
10: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
11: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98161469।
12: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो श्रोता, ये छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो चला थे कार्यक्रम चना जोर गरम निकाले के आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी पराबिक मा जो साथी रहा आज भी हमरे चंदा जी। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। पहला नंबर में है मेरी बात को ये हंसी में न टालो जो अपना बने उसे अपना बना लो कौन फिल्म है कौन सिंगर लोग गाना गाई नहीं है। इसे दो नंबर में है मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना का गाई नहीं दोनों का सही बताओ जी। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कहाँ से दिया जी आप लोगों के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदा लाइन वार्ड नंबर 4 में है यहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सपारी सूट सब मेर के कपड़ा सियत है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। कार्यक्रम का आप लोग हाँ देखा भी जाते सुना भी जाते जो आप के प्रिय रेडियो किसी सायर एफ एम 94 मेगाहर्ट्ज़ से चलत है। तो इसे आप के पठवा मैसेज हमारे हाथ में है मैसेज पठाई नहीं लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है इनके ठिकाना है जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से मैसेज भेजी नहीं है गोमती प्रसाद वर्मा जी। ये कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा बहुत प्यारा बहुत नीक लागत है आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है धन्यवाद है गोमती जी। कहने हमका गाना कोई अपने मन पसंद के सुनाए दिया जी हमका गोमती कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहिए है। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं जो मैसेज भेजी हैं लाल खां जो रजनवा वाक्य से ये कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है धन्यवाद है। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों की घरंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर है। तो साथी पहले सुना जाए प्यारा से गाना मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी।

हाँ तो सर तो अब का किया जाए, कार्यक्रम के एकदम अंत अंत में भी पहुँचे लागे हैं। तो साथी ऐसे अब आप लोगों से कहा बताइए कि जान पड़ते कि चंदा जी हमरे सुईमा के यहाँ 3 बजे लंग भगाए दिया था कि मैंने यही बात हमरे घड़ीवों में यहाँ है मोबाइलियों में अत है नहीं भगाई नहीं है दुश्मनी नहीं अदा करो। मैंने हमका लागत आए जब हमें देखा तो कहते आए भी तो बहुत उजियर है, मैंने टीम बहुत नहराएगा। तो साथी आप लोगों से बस यही है कि अब कार्यक्रम के एकदम हम अंत अंत में हन। तो अब कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर खेते खरियाने में हर जगह पर गाड़ी मोटर में ऑटो वगैरह में सब में हमारे श्रोता लोग ये कार्यक्रम का सुनत हैं, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।

थे कार्यक्रम में यहाँ जो भी कमी कमजोरी हुई सुझाव सलाह हमका जरूर देते आवाजई कैसे हम आप लोगन के बात एकदम मनन करवे जो कमी कमजोरी हुई जो आप लोगन का हाँ तो आप लोगन के यहाँ तो आप लोग नंबर में आए के और हाँ सुझाव दिया जाए कार्यक्रम तो साथ ही कार्यक्रम तो आप लोगन के सातों दिन के पैक है जैसे आज बीफे के हम कार्यक्रम चलावा जिमा आपका फोनिंग और काल फिर कार्यक्रम हाँ शुक्रवार है काल तो विदा है हाँ शनिवार के चंदा संध्या जी चलावत हैं इतवार के चंदा जी अच्छे कार्यक्रम चलावत हैं यानी जोक्स भावना से हाँ और सोमवार के फिर हम चले थे और मंगल के फिर चंदा जी चलावत हैं ऐसे यानी कार्यक्रम सातों दिन के पैक है तो आप लोग कार्यक्रम से एकदम निराश ना हुआ जी एकदम कार्यक्रम प्यार प्रेम के साथ माँ हंसी खुशी के साथ माँ सुना जी तो आज के विजेता हमरे भे हैं मोतीलाल यादव जो ये बाकी गांव बाके से तो आज के विजेता हमरे मोतीलाल जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है ताड़ी लगाए के स्वागत भी करा जा हाँ तो साथी जैसे पहला नंबर मारा है आप लोग सुनागा हाँ मेरी बात को ना तुम ऐसे टालो जो अपना बने उसे अपना बना लो हाँ बड़ी बेटी हाँ जो छोटी बेटी छोटी बहू फिल्म के गाना हो जो ये कुमार सानू गायन ना ऐसे दो नंबर मारा है गाना धर्मवीर के मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी मोहम्मद रफीक गायना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मोतीलाल जी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन पप्पू जी ज्योति टेलर के जो उनका उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देते कार्यक्रम का देश दुनिया में पठैन हमरे प्रावधिक में यहाँ चंदा जी जो सात दिन पूरा एक बजे से तीन बजे तक उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते प्यारा से गाना के साथ माँ हम परसोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम नमस्कार टाटा बाय बाय।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: రంగారెడ్డిస్ మీరు ఎవరెస్ట్.
1: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल.
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ.
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने.
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ.
3: फोन नम्बर 081-532-375.
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका.
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए. वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है. उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है.
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है.
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए. संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37.
6: नींद ना आए हमको, हाए जग सोता
4: है. बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न. यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है. यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं. और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं. साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है. जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है.
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो.
7: हाँ तो समय में दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है. बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेग्रा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड बांके. संपर्क नंबर 9840-2697, 9850-2697 और 9814-83-697.
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए.
9: Back to back.

0: Back to back. Back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
3: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
2: सच्ची? ये

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेंस

0: Action.
1: Is that what
2: it's
3: माया का सुबह
4: माया का सुबह
3: किसी समझ जो कुछ नहीं आ रही
5: किस जुड़े हुए लड़के का
4: जो तो बीए बारे में डिवोर्स पेशी
3: तो वो तो बीए बारे में पड़ी डिवोर्स पेशी की बात
4: सॉल्ड
3: भालू का चीन का इतनी झूठ क्यों बोलो मसले
5: मैं भालू लाए थे
3: बस
5: तिमी माया गर्ने मान्छे भएर त मलाई यस्तो भयो यो समाजले मलाई के सोच्ला मैले जानेर डिभोर्स गरेको ममाथि भएको अन्याय सहन नसकेर म डिभोर्स गरेँ

0: जनता केबल पांच दशक देखी
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त, पूर्वपट्टि हाम्रा सेवाहरू।

0: बहाजी ने अवसर पाओ
1: बर्जो पेंस
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज़।

0: California. Extreme energy drink.
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंस
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।